उत्तम सलोक साध के बचन मुलीक लाल रतन सुन कुमाप्त हो तो उदार आप त्रै लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग।

हमरे दुष्ट सब तुम कहबहु आपा दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेव सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर दे करिए।

कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुद सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के।

राम दासै हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह

पे उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत।

राणा राव न को रह रंग न तुंग फकीरा वारी आपो अपनी कोए न बंदा धीरा कहे कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहर न भव जल फेरा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परताख गुरु निस तारे सतनाम श्री वाहेगुरु साहब जी सोरठ महला पंजवा अबनासी जीअन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन का बरतन बिरला पावै कोई अबनासी जीअन को दाता सिमरत सब मल खोई